0: मैं
1: आप यहाँ कैसे?
0: जैसे ये सब
1: यानी कि आप मेरी?
0: जी हाँ, ऐसी मैं इसलिए।
2: खुसुर फुसुर वाली।